0: माता की जय।
1: टेक वाटर स्प्रिंकल अराउंड दी अगेन कुंड। ओम अग्निमीले प्रोहितम यज्ञस्देम चुचम होता रत्नगात्मम सांदल गोतुपद्ने इहां गक्ष इहां तिष्ट इति स्थापित। ओम तत्सत। राइट, एवरी टाइम आई से स्वाहा यू विल से स्वाहा एंड ऑफर लिटिल इनटू द फायर।

ॐ भ्वः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ मः स्वाहा ॐ जन स्वाहा ॐ तप स्वाहा ॐ सत्यं स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया

0: अंगारकाय नमः
1: स्वाहा
0: ओम बुं बुधाय नमः
1: स्वाहा
0: ओम ब्रीं बृहस्पत्यै नमः
1: स्वाहा
0: ओम शुं शुक्राय नमः
1: स्वाहा
0: ओम शं शनैश्चराय नमः
1: स्वाहा
0: ओम रां राहवेभ्यो नमः
1: स्वाहा
0: ओम किं कीर्तवेभ्यो नमः
1: स्वाहा।

ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ वयानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा. Take the coconut.

यदि इस भजन को सुनते समय आपके हृदय में माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की एक छोटी सी ज्योति भी प्रज्वलित हुई हो तो यही इस प्रस्तुति का सबसे बड़ा फल है। माँ दुर्गा अपने प्रत्येक भक्त की पुकार अवश्य सुनती है, कभी तुरंत और कभी उचित समय आने पर। लेकिन सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखिए, जीवन में चाहे कितने भी संकट, दुख, भय या कठिनाई क्यों ना आए, यदि आपका विश्वास माँ जगदम्बा के चरणों में अटल है तो कोई भी अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। माँ शक्ति, साहस, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें। हे माँ दुर्गा, हमारे जीवन से भय, दुख और निराशा को दूर करें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और संसार के सभी प्राणियों का कल्याण करें। यदि आपको यह भजन पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ की भक्ति से जुड़ सकें। आप सभी पर माँ दुर्गा की असीम कृपा बनी रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।